0: मेरे सर दो ही
1: ये प्रार्थना होती थी आप यहाँ पर
0: सर जी अब ना होती है 2 साल पहले हो गई
2: लब्बे आती है दोवन की तमन्ना मेरी पहले होती थी वो अब ना होती है
1: कब से बंद हुई
2: जब से डेम सर आए उससे पहले होती थी अब ना होती
1: क्या प्रार्थना थी जो यहाँ पर कराई जाती थी क्या नाम है उसका
3: लब्बे आती है दोवन की तमन्ना मेरी सर जी ये वाली प्रार्थना होती थी
1: कितने दिन करते आए हो आप लोग इस प्रार्थना
3: सर अब तो बंद हो गई ना सर अब नहीं होती है अब वो मतलब कि अब बंद हो गई जब से नए डीएम सर आए जब से बंद हो गई सर
4: कितना आधार है सर और इसमें जो है कोई षड्यंत्र मालूम देता मुझे तो यहाँ से कुछ नए विद्यालय को बदनाम करने के लिए क्योंकि हमारे विद्यालय की रेपुटेशन बहुत अच्छी है दूर तक हमारे स्कूल के बच्चे हर उसमें आते हैं हर उस शोबे में पहुँचते हैं उसीलिए स्कूल को बदनाम करने की कराया है
1: लेकिन जिस तरीके की वीडियो जो है सामने आया उसके अंदर आपके इस्लामिक प्रार्थना जो है कराई जा रही थी तो क्या वो कुछ क्या
4: ये जानबूझ के किसी ने कराया किया गया क्योंकि उसमें किसी का स्टाफ का भी फोटो नहीं है और ये जो है किसी ने वीडियो बनाई गई है अलग से इसके बारे में मैं छुट्टी पर था मेडिकल पर था मैं जबकि ये मालूम होती जाड़ों की मालूम मिल रही थी मैंने देखी नहीं है वो न मेरे पास उसका फोटो है लेकिन वो जब भी मैं मेडिकल पर था
1: क्या आपके द्वारा हिंदू बच्चियों को जो है हिजाब पहनवाया जाता था या हिंदू छात्रों को टोपियां वगैरह लगवाई
4: ऐसी कुछ नहीं है
5: And my colleague Samar Srivastav is now joining us on the story. Samar, what all religious activities were being imposed, especially on the Hindu students studying at the school?
6: See, religious activity in Kambal is seen as civil suspension, FIR, and administrative investigation in the entire matter. Kambal PM Street School has sent 3 teachers into suspension, and also FIR has been registered over that particular alleged Islamic activities. Major controversy has occurred in this particular extreme where allegations include Islamic prayers allegedly conducted in school, Hindu girl students allegedly encouraged to wear hijab, students allegedly asked to wear Islamic caps. Inquiry by AVSA reportedly found indications of religious activities, religious instruction, promotion of religious intolerance. One action is being taken is on decisions of district administration. Headmaster Anjar Ahmed has been suspended. Assistant teacher Mohammad Gul Izad has been suspended. Acting principal also suspended for allegedly concealing information. Also, a fire has been registered against the 2 teachers at the Nakasha police station. What India Today found from the ground report that school children were heard reciting Jaspe Aati Hai Dua prayer on camera. Accused teacher Anjar Ahmed denies allegations. Was charged of conspiracy to defame the school while Ankit Khandelwal formed 3-member committee for detailed investigation. Police and administration conducting further probe into the particular matter. Back to you.
5: All right, Samar, thank you for getting us those details. Let's also listen in to what the Sambal SP has said on this matter.
7: उन बच्चों से भी पूछताछ की गई जिन बच्चों को के वीडियो हैं इस तरीके के जिसमें हिजाब पहने हुए हैं तो जो हिंदू बच्चे हैं उनके हिजाब पहनने की जो स्थिति है वो क्यों आई है किन परिस्थितियों में उनके द्वारा पहना गया है और कौन कौन टीचर हैं कहाँ पढ़ाते हैं इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं उन गतिविधियों को ने नोट किया है उसके साथ साथ विवेचक हैं उनको भी बताया गया है कि तुरंत ही जो अध्यापक हैं इस तरीके के लोग हैं इनके बयान नोट किया जाए और जो 2 FIR हैं 1 FIR है जो सेक्शन 353(2) और जिसमें 61(2) जो दोनों BNS के सेक्शंस हैं उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है
5: And let me now go across to Abha Bakaya of Business Today TV with all the updates of the markets in this business show. Abha, over to you.
8: Look, this investment guru's tips will double your money. Just claim the offer.
9: Double your money from any random group. Pay attention. Promising double returns, they'll lure you in tight. Unverified groups will send fake tips overnight, emptying your pockets before you can fight. SEBI and NSC advise, consult only SEBI registered advisors and make payments only to verified accounts or UPI IDs. An investor awareness initiative by SEBI and NSC.
10: Presented by National Stock Exchange. Co-presented by Canara Bank. Together we can.

0: सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: इफ यू वॉन्ट टू स्केल द मीडिया हाइट्स, वी विल टीच यू द रोप्स। देयर इज नो पीक इन जर्नलिज्म दैट आवर मेंटर्स हैवंट स्केल्ड, सो लुक नो फर्दर। जॉइन our postgraduate diploma programs and gain guaranteed internship and proven placement record with top media houses and companies. For more information, visit indiatodaymediainstitute.in or call 95600 65465.

0: moment now. This is the third consecutive NDA government in Assam, the saffron wave that began in 2016 under Sarbanand Sonowal has now deepened and consolidated under Himanta Biswa Sarma. Those are the images coming in. Let's listen in. Nitin Nabin, the BJP president, has arrived, and so have several senior leaders.
1: Kamakhya ka ashirwad isi prakar se Assam ki janta par देश समस्त देशवासियों पर बना रहे और मां कामाख्या का आशीर्वाद है कि भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी और हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार को असम की जनता ने फिर से विश्वास और भरोसा किया है और मैं आज सौभाग्यशाली हूं कि मां कामाख्या का आशीर्वाद लेकर उस शुभ कार्य का शुभारंभ करने जा रहा हूं।
2: ऐसे हमारे दूसरे बार के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा सरमा जी के प्रति जो लोगों ने एक विराट एक जनादेश दिया है वो जनादेश आज इसका प्रमाण है।
3: इट इज अ डबल एंडोर्समेंट, वन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड आल्सो लोकल चीफ मिनिस्टर। दिस इज अ हिस्टोरिकल विक्ट्री। आई एम अवेयर ऑफ असम पॉलिटिक्स फ्रॉम द बिगिनिंग। वेरी गुड डेवलपमेंट।
4: बहुत बहुत ही खुशी का दिन है। तीसरी बार असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर और हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा जी पर जो विश्वास दिखाया है उसके लिए मैं असम की जनता को प्रणाम करता हूं और देश के भी विकास में एक बहुत अहम भूमिका असम निभाएगा ऐसा मेरा विश्वास है।
5: मैं असम की जनता को धन्यवाद दूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा, क्योंकि इस बार लैंडस्लाइड मैंडेट दिया है, हिस्टोरिक हैट्रिक जनता ने दी हुई है और इसमें मैं ये भी कहूंगा कि हिमंता बिस्वा सरमा जी का जो पिछले 5 सालों में उनका डायनामिक विजनरी लीडरशिप उन्होंने दिखाई, यहाँ का डेवलपमेंट किया है डबल इंजन की सरकार। यहाँ पर जो डबल इंजन की सरकार अभी तेजी से काम करेगी, आगे बढ़ेगा ये आसाम। पिछले 5 सालों में भी, पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है उससे पहले का आसाम अगर देखेंगे हम और पिछले 10 सालों का आसाम देखेंगे उसमें फर्क है।
6: इतना बड़ा जनादेश दिया ये दर्शाता है कि उनका उनकी विकास की राह और मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, ये दो चीजें हैं जिसपे देश की बड़ी आबादी विश्वास करती है और अब तो उसके दायरे बढ़ते जा रहे हैं। हकीकत है कि जहां एक तरफ हम लोग का जनादेश बढ़ता जा रहा है वहीं विपक्ष धीरे धीरे समाप्त हो रहा है अपने ही कारणों से, क्योंकि वो खुद आत्ममंथन नहीं कर रहा है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में देखिएगा समाजवादी पार्टी का भी यही हाल होगा, पंजाब जाते जाते एक राज्य में आम आदमी पार्टी रह गई है वो भी जाएगी और मैं मानता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार देश के अब हर राज्य में बनने जा रही है।
0: And what a week it has been for the BJP. First, the swearing in of the first BJP government in the state of Bengal with the swearing in of the new chief minister there in Shubhendu Adhikari, which was also a show of strength. And now Himanta Biswa Sarma being sworn in for the second consecutive term in Assam. Again, the chief ministers and deputy chief ministers of all NDA ruled states will be in attendance. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah will be there in that rally ground in Guwahati. We have Kaushik Deka now with us. Kaushik, what does today mean for the BJP? Here is the man who has been singularly responsible for the expansion of the BJP's footprints across Assam. Of course, the mission began in 2015 when he joined the party.
7: Yeah, this is a big day for Dr. Himanta Biswa Sarma because this is the first mandate he has won on his own name. Last time he was not the CM candidate, so then he was made the CM. But this time it was all clear right from the very beginning that this election has been fought in his name. So this is very significant for him. And tomorrow, on May 13th, he would be completing 25 years in Assam Assembly. Since 2001, he hasn't lost one election. And whether it's for himself or whether for the party he represents. So it's a big mandate and a lot of expectations would be riding on him. And that's why this big extravaganza. I mean, he wants to showcase his arrival. And the intent is very clear that it has become such a big event that this is the next 5 years he will showcase the Himanta

0: श्री चरण बोड़ो मिनिस्टर डिजिग्नेट,
1: आं मुश्री चरण बोड़ो अबं गसाई मूंगाव समायखिरा लानानै बुङोदि आङो आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितखौ सैथोयै फोथायगोन आरो गनायगोन। आं भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन। आं आसाम रायजोनि सासे मन्त्रि महरै फोथायनाय आरो गोगो गोसोयै आंनि मावनो गोनां हाबाफोरखौ गिनाय एबा सोरखौबा अन्नाय मोजां मोननाय एबा गिज्रा गोसो लायालासिनो संबिजित आरो खान्थि बायदियै गासैबो थाखोनि सुबुंनि फारसे गाहाम बिसायगोन।
0: आं
1: चरण बर' अबं गसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङोदि आसाम रायजोनि सासे मन्त्रि महरै बिबान मावफुंनायाव आंनो मन्त्रि महरै दैथाय हरनाय एबा मिथिहोनाय बाथ्राखौ जायखि जाया सुबुं एबा सुबुंफोरनो थोंजोङै एबा खेंसालियै फोरमायनाय एबा मिथिहोनाय नङा।

0: जी देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है, और जिससे कि लगातार जो है हम बार बार एक ही बात सामने आ रही है पेपर लीक की, और इसके लिए गवर्नमेंट लगातार ये बातें करते रही है कि हम इस पे कानून बना रहे हैं या इसको रोकने का काम कर रहे हैं, या हमने पेपर माफियाओं पे लगाम लगा दी, पेपर लीक माफियाओं पे, या ये कहते हैं कि हम बड़े मगरमच्छ पकड़ने की बात करते हैं, लेकिन बाद में वही बात आती है कि वो पेपर लीक जो है यहाँ राजस्थान से ही छपा हुआ आता है। ये बहुत गंभीर विषय है। लगातार जो है पिछले काफी समय से इस प्रकार की एक्टिविटी चल रही है, चाहे वो राजस्थान लेवल के पेपर हों या हिंदुस्तान के पेपर हों या आपके जुडिशरी के पेपर हों, अलग अलग एजेंसियों के पेपर हों, तो वो सब में ये पेपर लीक का इतना बड़ा जो है माफिया काम कर रहा है, जो कि पूरे देश के अंदर जिसकी जड़ें जो है पहुंची हुई है। इस पे तो बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए, और ये निर्णय अच्छा हुआ है कि इसको सीबीआई जांच कराई जाएगी और इसको रद्द किया गया है। ये बहुत जरूरी था, लेकिन बार बार रद्द होता है। ज्यादातर जो माता पिता है वो गरीब हैं, और कैसे कैसे करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे कैसे करके परीक्षाओं की तैयारी करते हैं बच्चे, और जब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया, तो उन बच्चों पे भी बहुत बड़ी मैं समझता हूँ मानसिक उन पे प्रताड़ना होती है। तो एक बहुत बड़ा इशू है, लाखों बच्चे ये एग्जाम देते हैं और उसके बावजूद इस प्रकार की बातें सामने आती है। इसमें कई जगह जैसे कोचिंग वगैरह का भी इसमें मामला सामने आता है, कोचिंग के लोग जुड़े हुए रहते हैं
1: जी।
0: तो ये इस पे
1: मेरा आपसे अगला सवाल यही था, और क्या जानकारी मिली है, क्योंकि इसमें सही तरह से जांच होनी चाहिए, कौन लोग इन्वॉल्व हैं इस पेपर लीक में, किस तरह के मीडियम को वो यूज करते हैं, डिजिटली करते हैं, व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाते हैं, और क्या जानकारी है?
0: देखिए, इसमें कई बार ऐसा होता है कि पेपर को लेके जिन बच्चों को पेपर लीक कराया जाता है, जिन बच्चों को पेपर दिया जाता है, उनको अलग से तैयारी की जाती है, कहीं उसको बस में तैयारी करा देते हैं, या कहीं देखते हैं कि उसको एक अलग सेंटर पे ले जाके रात भर उनको तैयारी कराते हैं, कई बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप पे उनको पेपर भेज दिया जाता है। इस प्रकार की चीजें कई बार पहले भी सामने आई है, या कई बार जो है कोई स्पेसिफिक कोई जगह ले जाके भी सिंगल बच्चों को भी इस प्रकार की तैयारी कराई जाती है। तो ये मामले कई बार आए हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। बड़ी लेवल के जो पेपर होते हैं उसमें जो है, क्योंकि बच्चे लाखों रुपए देके पेपरों खरीदते हैं, फिर वो उसको नीचे ले जाके सबलेट करते हैं, तो पूरी चैन बनी हुई है, और जब तक इसका जो मुख्य सरगना है वहां तक हम नहीं पहुंचेंगे, तो मैं समझता हूँ इस पे लगाम लगाना बहुत मुश्किल है। इस पे सख्त एक्शन हो, ऐसे जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश का जो कानून है अभी बहुत कमजोर कानून है, उसमें 1 वर्ष से 10 वर्ष की सजा है, 1 लाख से 10 लाख का जुर्माना है, इससे तो वो वापिस छूट के आ जाएंगे। ऐसे लोगों पे तो और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
1: आपने बिल्कुल सही कहा, और बात ये भी है कि इसकी भी बहुत गुंजाइश है कि इस तरह के पेपर लीक्स दूसरे स्टेट्स में भी हो रहे हैं।

0: एक बहुत बड़ा स्कैम है। बड़ी लेवल के जो पेपर होते हैं उसमें जो है, क्योंकि बच्चे लाखों रुपए देके पेपरों खरीदते हैं, फिर वो उसको नीचे ले जाके सबलेट करते हैं, तो पूरी चैन बनी हुई है। और जब तक इसका जो मुख्य सरगना है वहां तक हम नहीं पहुंचेंगे, तो मैं समझता हूँ इस पे लगाम लगाना बहुत मुश्किल है। इस पे सख्त एक्शन हो, ऐसे जो भी लोग इसमें शामिल है उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश का जो कानून है अभी बहुत कमजोर कानून है, उसमें 1 वर्ष से 10 वर्ष की सजा है, 1 लाख से 10 लाख का जुर्माना है, इससे तो वो वापिस छूट के आ जाएंगे। ऐसे लोगों पे तो और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
1: आपने बिल्कुल सही कहा, और बात ये भी है कि इसकी भी बहुत गुंजाइश है कि इस तरह के पेपर लीक्स दूसरे स्टेट्स में भी हो रहे हैं। पहले भी इन तरह की कंप्लेंट्स आई हैं, इस तरह की डिस्क्रिपेंसी हाईलाइट हुई है, पर बड़ा कंसर्न ये है कि अभी तक इस प्रैक्टिस
2: है, और अपने अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर, ये जो मूलभूत प्रिकॉशन है जो लोगों की आस्था को कायम करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, उसमें पूरी तरह सरकार फेल हुई है।
3: लेकिन सचिन, आपको क्यों लगता है कि अभी इस मामले में सरकार को छुपा रहे हैं?
2: मुझे लग रहा है क्योंकि राजस्थान में 12-15 लोगों को डिटेन किया है पुलिस ने, उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया फॉर्मली, उन पर कोई FIR नहीं करी है, कोई चार्जशीट नहीं करी है, कोई केस दायर नहीं किया, जबकि प्रमाण है पूरा, जो क्वेश्चन पेपर है वो एग्जाम्पल्स में सारा 130 क्वेश्चन हूबहू कॉमा फुल स्टॉप के साथ आए थे, तो या तो पेपर लिखने वाले ने किया है, और जो मुझे जानकारी मिली है कि जो प्रिंटिंग है जयपुर में हुई है, तो ये अगर पहले से पता था तो उस पर प्रिकॉशन नहीं लिए गए। और अब कैंसिल करने से निश्चित रूप से बेमानी रोकने की कोशिश है, लेकिन जिन लोगों ने ईमानदारी से पेपर दिया उनका क्या होगा? कोई लोग ओवरेज हो जाएंगे, जिन लोगों ने, इतना मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, गरीब बच्चे हैं, गांव देहात के हैं, उन सबने मेहनत करी है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कैंसिल करना बड़ा आसान है, आपने कर दिया, लेकिन इसके रिपरकशंस क्या है, इसका कौन जिम्मेदारी उठाने वाला है? और ये 2-3 दिन बाद सुर्खियों से खबर हट जाएगी तो फिर अपना वापस चालू हो जाएगा। और पहली बार नहीं हुआ, मैं कहना चाह रहा हूँ बार बार हो रहा है, लगातार हर साल हो रहा है, तो इसके लिए सरकार ने क्या प्रबंध की है? तो सारी पोल खुल चुकी है मुझे लग रहा है।
3: लेकिन सचिन, एक जिम्मेदारी तो ले ली, कम से कम पेपर रद्द तो कर दिया गया है,
2: अब क्या करेंगे? जब पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा है, टेलीविजन हर चैनल में चल रहा है कि सारे क्वेश्चन हमारे पास थे, तो उसकी वैधता क्या रह जाती है? उसकी सैंक्टिटी क्या है? क्रेडिबिलिटी कैसे क्रैम की जब सारा पेपर ही आउट हो गया? तो उसमें बाद में जाकर उसको कोर्ट कचहरी में जाता, फिर करना पड़ता सरकार को कोर्ट के आदेश के बाद, आज कर दिया है अपनी जान बचाने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि इसमें तो बहुत बड़ा मसला है, इसमें पैसा जाना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है सरकार इसकी जांच करेगी तो कोई प्रमाण निकलने वाले नहीं है। इसकी तो जुडिशियल जांच हो, और इसमें तुरंत टाइम बाउंड जांच हो, और जो जिम्मेदार लोगों को पकड़ा जाए, उदाहरण पेश किया जाए, लिपापोती कर एग्जाम कैंसिल कर अपना पल्ला झाड़ देने से पार नहीं पड़ने वाली।
3: लेकिन सचिन, जिम्मेदारों को पकड़ने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए CBI जांच की अनाउंसमेंट की गई, इससे संतुष्ट है आप?
2: मुझे नहीं लगता, क्योंकि आजकल जो एजेंसी आप सब जानते हैं, चाहे वो CBI है, ED है, वो पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती है, वो उनके आका जो बोलते हैं उसी प्रकार कदम उठाते हैं, किसको डिटेन करना है, किसको छोड़ना है, किस पे लीनियंट रहना है, किस पे सख्त रखना है, तो ये बिल्कुल निष्पक्ष ट्रांसपेरेंट, जब तक एक गवर्नमेंट के बाहर की कोई एजेंसी जांच नहीं करेगी तब तक पता नहीं पड़ेगा। जिसने गलती की है, जिसमें कमियां हैं, अगर वही अपनी जांच करेगा तो क्या प्रमाण आएंगे, और उसकी क्या मतलब ऑथेंटिसिटी क्या रहेगी उस जांच की जो खुद ही आप कर रहे हैं? क्योंकि CBI पे लोगों का विश्वास नहीं रहा है, मुझे नहीं लगता कि CBI से कोई हकीकत तक पहुंच पाएगी।
3: सचिन, आप इसमें सरकार की ज्यादा गलती मान रहे हैं, क्योंकि NTA सारी चीजें देख रहा था, उसकी गलती मान रहे हैं?
2: देखिए, NTA का किसने इसका आविष्कार किया? सरकार ने किया था, और ये कहकर किया था कि इससे पूरा पेपर लीक हम बिल्कुल बंदे लग जाएगी, कभी नहीं होगा। और अगर कोई फूल प्रूफ अरेंजमेंट आप नहीं कर सकते तो बता देना चाहिए कि हम नहीं कर पाएंगे इसको, और हर स्टेट में हो रहा है, और जैसा मैंने कहा कि ये पहले बार नहीं हुआ, नीट वाले भी पहले भी इसमें बहुत आरोप लगे थे, तो इतना महत्वपूर्ण एग्जाम है, पूरे देश भर के लोग इसमें अपना सब कुछ लगा देते हैं, और जो नौजवान बच्चे हैं उम्मीद के साथ अपनी तैयारियां करते हैं, तो अगर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है फिर किसको आप दोष देंगे? कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा ना इसमें। अब अधिकांश सरकारें भाजपा चला रही है, केंद्र सरकार आप चला रहे हैं, एजेंसी आप चला रहे हैं, NTA आपने गठित करी है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कुछ अच्छा होता है तो उसके वाह वाह लूटने के लिए आप सबसे आगे आ जाते हैं, और अब इसमें गलत हो रहा है तो देन somebody should be made accountable।
3: थैंक यू सो मच सचिन, आज तक से।
1: एंड दैट वाज सचिन पायलट speaking on the issue as he's spinning the blame on the central government and the state government, of course. Remember, the CBI, that is to probe the matter of the paper leak. But most importantly, innocent students who are at the receiving end, while the NTA has also announced that the fees will be refunded and for the re-exam, the students will not have to pay again. But that also means the waste of hard work and student

0: students who have been preparing for the exam all this while along. Let me take this back to Mr. Tikaram, who continues to be with us on the broadcast. Tikaram ji, Congress ab is issue ko bahut aage le ja rahi hai. Abhi hum dekh rahe hain kis tarah se NSUI ke protest bhi ho rahe hain Delhi mein, ki ab is par jaanch honi chahiye. Aur halanki CBI ko ye case diya gaya hai, but ye serious mang hai ki ek इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ना होकर एक सेंट्रल एजेंसी को इसमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए.
1: हाँ, इसको तो जुडिशरी की देखरेख में इसकी पूरी जांच होनी चाहिए. ये बहुत बड़ा मामला है, ये पहला मामला नहीं है. मैंने पहले भी आपको बताया था, हर स्टेट के अंदर हो रहे हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर हो रहे हैं. और देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो मेरा ये है कि व्यापम घोटाले के समय में जो अध्यक्ष थे उनको यहाँ पे एनटीए का उस समय चेयरमैन बना दिया गया. तो आप समझ
2: में पेपर लीक हो रहा है, हर जगह पेपर लीक हो रहा है, और हम स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट होने के नाते अगर हम अपनी आवाज उठा रहे हैं तो देख रहे हैं किस तरीके से जो पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है. क्या मतलब इस तरीके से आप देश में शिक्षा की बहाली आप देख रहे हैं, शिक्षा दिन प्रतिदिन बदहाल हो रखा है. थैंक यू.
0: And that's the word coming in from students who are now staging a protest as they demand that there must be an investigation into who really is responsible for the paper leak. Remember, this is not the first time that a complaint of this nature has come in, but it is...
3: भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है बच्चों के साथ, ये बहुत बड़ी दुर्दशा है देश की.
2: इस तरीके से प्रधानमंत्री हमारे विश्व गुरु बनेंगे, ये खुद चौथी पास है, क्या जानेंगे मेडिकल की पढ़ाई और IIT नेट जेआरएफ का पेपर लीक हुआ है किस तरीके से. ठीक है,
0: Many voices coming in from protesters as chorus is growing that there needs to be a detailed investigation to hold those accountable for this paper leak. But the bigger concern that this is not the first time. Remember, several such complaints that have come to light. This time around, the NTA also announcing a cancellation of this exam, saying that they could not have the exam.

0: involved in this, I believe. Because the way the government of India is trying to cover up, this is definitely some big names, maybe some big wig in BJP is involved in this.
1: Okay.
0: So now it is apparent. Now because it is now the evidence is so obvious, so they have cancelled. I think somebody's health should roll on this.
1: Okay.
0: You see, I think the concerned minister should resign on this. They can't run a government like this. You see, more than 25 lakh students are writing the exam.
1: Yeah.
0: In the hope of becoming a doctor. And the government of India is selling the BBS seat, that means to say.
2: The auctioned and sold and on WhatsApp, then this is it is happening very systematically. And it is, I think it's a systematic murder of the aspirations of 22 lakh children who are writing. And what is the government doing? I mean, it's been in the last 10 years, I think there have been close to around 89 paper leaks, 48 re-exams. And quite naturally, the authorities point fingers at the government. It looks like as if they are benefiting from this paper leaks.
1: Okay. They have now given the case to CBI, sir, and saying that they would issue a fresh dates for the exam.
2: Well, how many? See, when an exam of this nature is there, the students study for a couple of years. They prepare for this. And every time that an exam is going to get, they're going to write an exam, the paper leak happens. Imagine the mental strain on the students. So many people cannot afford this also. Still, they go ahead and do whatever they can. And what will the lower income group do, middle income group do? I mean, it's not just mental strain, it's a strain on their economic...
1: Yes, sir.
2: ...households.
3: हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं आनंद कुमार. आनंद जी, आपका सबसे पहला रिस्पांस जो पेपर लीक की खबर आई है, और ये पहली बार नहीं है, फिर से पेपर लीक हुआ है, एग्जाम कैंसिल हुआ है.
4: हाँ, ये तो पहली प्रतिक्रिया हमारी ये है कि बहुत बुरा हुआ है उन बच्चों के साथ, तो बहुत बुरा हुआ है जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं इस उम्मीद में कि इस बार सफलता मिलेगी. बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स भी घबराए हुए हैं, मेहनत करके पैसे खर्च करके बच्चों को पढ़ाया. तो ये तो बहुत अफसोस की बात है कि ऐसी घटना घटी है.
3: आप स्टूडेंट्स को क्या डूज एंड डोंट्स कहेंगे इस टाइम पर, क्योंकि थोड़ा पैनिक का माहौल भी हो सकता है, स्टूडेंट्स घबराए हुए हैं, उनको नहीं पता कौन सी बात माननी चाहिए कौन सी नहीं, अब एग्जाम के लिए फिर से अपना मोराल कैसे हाई रखेंगे. आपकी डूज और डोंट्स की लिस्ट क्या है स्टूडेंट्स को?
4: हम तो यही बच्चों को बोलना चाहेंगे, पेरेंट्स को बोलना चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है. देखिए, ऐसी दुर्घटना घटी है, बहुत ही खराब बात है, लेकिन अच्छी बात है कि तुरंत अपराधी पकड़े भी गए हैं. और उससे भी अच्छी की बात है कि राहत की बात बोली, अच्छी बात मत बोली, राहत की बात है कि एग्जाम कैंसिल हो गया. अब ऐसी परिस्थिति में अपने आप को फिर से तैयार करें परीक्षा के लिए. बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमारी परीक्षा बहुत अच्छी हुई थी, पता नहीं इस बार होगी कि नहीं. अरे, विश्वास रखिए, उससे भी अच्छी होगी. आप थोड़ा रिवीजन करिए, मन को तैयार करिए, और सोचिए कि एक बार और मौका मिला है, ये समझ के कोशिश करिए, घबराइए मत. हाँ, डरने वाली बात कब होती? जब परीक्षा रद्द नहीं की जाती. डरने वाली क्या बात होती? जब असमंजस की स्थिति महीनों बनी होती. अभी तो तुरंत घटना घटी, तुरंत कार्रवाई हुई है. इसलिए आप निराश न हो, उदास न हो. और सरकार से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं उन पर बहुत सख्त कार्रवाई की जाए, उनको बेल न मिले, उनको कड़ी सजा हो, ऐसी व्यवस्था कर दी चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई इसकी पुनरावृत्ति न करे.
3: जी, और एनटीए के क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं, खासकर क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, और क्यों इसमें तह तक नहीं गए हैं जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अब ये केस सीबीआई को दे दिया गया है. क्या आपको लगता है कि इससे एक जो शक का माहौल है वो हटेगा, क्योंकि अब सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है?
4: हाँ, एकदम जरूर हटेगा, लेकिन उसके पीछे की वजह ये है कि देखिए, जहाँ जो खबरें आ रही है, पता नहीं कितना सच है, ये तो सीबीआई बताएगी जांच के बाद, कि इसके पीछे कोचिंग माफियाओं का हाथ है. तो जो ऐसी घटना हर साल घटती या हर बार घटती या कई बार घटती है, तो जो कानून बनाए जाते हैं कोचिंग का, उसको अमल करने के लिए सरकार दबाव डालती है कोचिंग संस्थानों पर. कुछ दिन बाद वो ढीली पड़ जाती है सरकार. तो सरकार को

0: चाहिए, हमारा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप कोचिंग पर सख्ती से कार्रवाई करें, शिक्षा को व्यापार न बनने दे। और देखिए आजकल कोचिंग में मार्केटिंग टीम है, सेल्स टीम है, क्या है भाई, कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं तो प्रोडक्ट नहीं बिकता है, उसको और बेचने के लिए वो लोग क्वेश्चन तक लीक करवा रहे हैं। तो उन पर लगाम, जड़ तक पहुंचिए और उनका इलाज करिए ताकि ऐसी घटना न घटे।
1: ऑपोजिशन अब कड़े सवाल उठा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर कि क्यों ये केस पहले सीबीआई को नहीं दिया गया, पर एजुकेटर्स सब जगह कह रहे हैं कि देखिए सरकार बदल सकती है, पर ये जो मुद्दा है, ये जो इशू है, इस पर सबसे पहले स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट आगे रखना चाहिए, और अगर वो होगा तो सरकार किसी भी की भी हो पर स्टूडेंट्स को कोई हार्म नहीं होगा।
0: नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, सिस्टम मजबूत होना चाहिए, सरकार जो भी रहे, किसी भी दल की रहे, बच्चों का भविष्य और पेरेंट्स का जो सब चीजें दांव पर लगी रहती है बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीए को सख्त करना चाहिए, उनका सिस्टम स्ट्रांग करना चाहिए ताकि ऐसा न हो। इसके लिए प्लान सालों भर चलना चाहिए, नहीं कि यह घटना घटी, कार्रवाई हुई, थोड़ी मीटिंग हुई या बात खत्म होगी। परीक्षा शुरू होने के कई महीने पहले से इसकी तैयारी होनी चाहिए, इसके इंतजामात होने चाहिए ताकि अगली बार ये घटना न घटे। और पेरेंट्स का जो सब चीजें दांव पर लगी रहती है बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीए को सख्त करना चाहिए, उनका सिस्टम स्ट्रांग करना चाहिए ताकि ऐसा न हो। इसके लिए प्लान सालों भर चलना चाहिए, नहीं कि यह घटना घटी, कार्रवाई हुई, थोड़ी मीटिंग हुई या बात खत्म होगी। परीक्षा शुरू होने के कई महीने पहले से इसकी तैयारी होनी चाहिए, इसके इंतजामात होने चाहिए ताकि अगली बार ये घटना न घटे।
1: जी आनंद कुमार जी, आपका धन्यवाद करना चाहूंगी इंडिया टुडे से बात करने के लिए। And let me take this back to my colleague Devankar, who continuing students again and again to say that while it may be disappointing to know that there is a re-exam, but one must try and look for the silver lining that the paper got cancelled, that it was a leaked paper, that credibility could have really taken a hit, and those students who are truly meritorious could have probably lost their chance given the fact that the paper has been leaked. But while there may be an atmosphere of panic, do not trust any sort of misinformation and keep your morale high to understand that this is yet another opportunity that is coming in the way of students. Devankar, I want to take this back to you, to the reassuring word that is certainly coming in from all educationists to urge students to try and see the silver lining, to say that this is another opportunity and purely look at that. But the biggest concern of all students, of all parents, of all educationists, just to

0: And if those questions are being asked, then the government of the day or the agency or the investigating authority needs to look into how, if they have lacked in performing their duties, then how they have lacked, and come out with answers rather than, you know, trying to shift blames or trying to question the person who is questioning. It's important for the NTA to look within and find out answers upon the situation that it has created for itself, upon the kind of mess that it has created for itself, and cancellation of the NEET paper not once but again. Earlier it happened, those questions, then that person could have cleared the NEET examination probably if this cancellation would not have happened. And imagine if that person kind of person becomes a doctor and treats patients, what kind of repercussions that could have for those people that person treats. And that is something which, you know, can clearly send down shivers one's spines. And also, you know, the fact that this has happened again, this is not for the first time that it's happening. It's a recurrence. It's kind of a situation which has come up once again, and this is something which the NTA needs to clearly look into. The Central Board of Investigation needs to also look into the fact that what kind of role or action or inaction that was done by NTA which has led to this kind of a situation, if any. And the Central Bureau of Investigation will have to get into the depth, will have to find out what was the trail, whether there was large exchange of money online, whether lakhs of rupees had transacted through UPI or through other means, through whether there were any bank transactions or not prior to the paper that was held. Because as per information with India Today, Swechha, the guest paper had already reached several of the career counselors in Sikar district of Rajasthan, and as per information, Sikar, Jhunjhunu, Jaipur, Churu, apart from Kerala, are the main areas which can become the center of investigation, or can become the places where the Central Board of Investigation will have to get down to and investigate the kind of trail that this perhaps has taken, whether it was from the printing press in Jaipur, from where the paper allegedly leaked, and thereafter the paper reached Sikar district of Rajasthan, or whether it was that it reached Kerala first and then it reached Sikar district, and how many hands it had exchanged.
1: Many questions that are surfacing, and most importantly, students that are at the receiving end is the sad part of it. Mr. Hanuman Benival is now with us on the phone line. Mr. Benival, your response to this paper leak at how students are now having to prepare for a re-exam?
2: आप हिंदी में सवाल पूछे मेरे से हिंदी
1: जी हनुमान जी आपका
2: आप इंग्लिश में जवाब दे दूंगा लेकिन हिंदी में पूछे आप मुझे हाँ
1: हनुमान जी आपसे जानना चाहूंगी पेपर लीक की खबर आई है स्टूडेंट्स पैनिक कर रहे हैं उन्हें घबराहट है अब फिर से री एग्जाम देना पड़ेगा
2: देखिए राजस्थान जो पेपर लीक का सबसे बड़ा केंद्र बन गया और इसमें आज कांग्रेस नेताओं के जो ट्वीट मैंने देखे मतलब ये शर्मसार करने वाले कि कांग्रेस के राज में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए और तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन कर रहे थे और अब नीट का पेपर लीक होना सीकर से वो राजस्थान से ये इस घटना को दर्शाता है कि इन सरकारों को राजस्थान में लोगों ने देखा है 70 साल तक लोग परेशान है और सबसे बड़ी बात क्या पर रद्द कर दिया और CBI इंक्वायरी दे दी लेकिन पेपर रद्द करने से उन अभ्यर्थी जो एग्जाम देके लंबी कड़ी मेहनत के बाद किसान के बेटे बेटियां लंबा कोचिंग करने के बाद पूरा माइंड इनको साल साल दो दो साल तक तैयारी करते हैं और ये सब कुछ मतलब उसके अंदर पढ़ाई में लगा देते हैं अपना समय खेलने का कूदने का जो भी ये इनका परिवार के साथ समय बीतना चाहिए बच्चों का तो ये सारा पूरा फोकस करने के बाद इन्होंने एग्जाम दे दिया इन्होंने करीब करीब आंसर किए जो पता है हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा तो वो आराम से रिलैक्स मोड में है और अब एकदम से आपने पेपर रद्द किया तो लाखों लोगों पर क्या बीतेगी और पेपर रद्द करना जरूरी भी इसलिए हो गया कि पेपर आउट हो गया व्हाट्सएप के माध्यम से केरल के सीकर पहुंच गया ये नीट का एग्जाम पहली बार नीट का पेपर लीक नहीं हुआ 2-3 साल पहले भी हुआ था तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्लीन चिट दे दी थी कि कुछ नहीं हुआ उसके बाद कई सेंटर पर हम लोगों ने प्रयास किया जिसमें कुचामन का एक सेंटर भी था और फिर वो पेपर वापिस कुचामन सेंटर का रद्द हुआ लेकिन आप ही बताओ कई एग्जाम सेंटर पे रद्द कर देते हो कई पे नहीं करते तो पेपर लीक होता क्यों है ये NTA एग्जाम करवा रहा है आखिर पेपर लीक का जो कारण है वो क्या कारण है और राजस्थान तो सिर्फ

बड़ा कारण इसलिए है कि यहाँ सरकारें कांग्रेस बीजेपी के रही राजस्थान के अंदर। अभी देखो कितने कांग्रेसियों में ट्वीट आ रहे हैं कल से, वो अब कह रहे हैं हमारी बात को भूल जाओ, तुम्हारा नीट का लीक हो गया, हम तो फ्री हुए, तुम्हें हमारे पारो रोज लग रहे हैं। अभी आरपीएससी के जितने मेंबर पकड़े गए, बड़े मगरमच्छ पकड़ने की बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, तो बड़े मगरमच्छ बीजेपी को पकड़वाने चाहिए। और सीबीआई इंक्वायरी देने से क्या हो गया, राजस्थान के 6-7 मामले सीबीआई के अंदर पेंडिंग पड़े हैं 3-3-4-4 साल से। सीबीआई के पास इतना वर्कलोड है, सीबीआई काम ही नहीं कर पा रही है, वापिस लौटा देती है। तो मुझे नहीं लगता है जो हालात देश के अंदर बन रहे हैं ठीक नहीं है हालात। प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को सुना के अलावा, इन नौजवानों की जो बेरोजगारी, ये पेपर लीक की घटनाएं, आत्महत्याएं, बढ़ते अपराध, इन पर चिंता जाहिर करनी चाहिए। पेपर रद्द कर दिया ये अच्छी बात है, लेकिन पेपर रद्द करने से उन लाखों लोगों पर क्या बीतेगी जो लंबी तैयारी के बाद इसके अंदर सेलेक्ट हुए हैं। कई लोग मेरे से ये सवाल भी पूछेंगे कि एसआई भर्ती में आप रद्द करवा रहे थे, वो मैं इसके करवा रहा था कि 800 में से 600 नकली थे उनके अंदर, फिर 200 आदमी कुछ नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कही कि गिलास एक

0: व्यापारी वापिस लौटा देती है। तो मुझे नहीं लगता जो हालात देश के अंदर बन रहे हैं ठीक नहीं है हालात। प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को सुनाओ के अलावा इन नौजवानों की जो बेरोजगारी, ये पेपर लीक की घटनाएं, आत्महत्याएं, बढ़ते अपराध, इन पर चिंता जाहिर करनी चाहिए। पेपर रद्द कर दिया ये अच्छी बात है, लेकिन पेपर रद्द करने से उन लाखों लोगों को क्या बीतेगी जो लंबी तैयारी के बाद इसके अंदर सेलेक्ट हुए। कई लोग मेरे से ये सवाल भी पूछेंगे कि एसआई भर्ती में आप रद्द करवा रहे थे, वो मैं इसके करवा रहा था कि 800 में से 600 नकली थे उनके अंदर, 200 आदमी कुछ नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कही कि गिलास, एक गिलास जो है पानी का उसमें एक बूंद जहर मिला तो अलग नहीं कर सकते, और दूध से पानी अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको रद्द करना जरूरी है। तो राजद इस मामले में बयान देना चाहिए।
1: पर एनटीए का कहना है कि हमने समय पर पेपर कैंसिल कर दिया। एजुकेशनिस्ट भी बोल रहे हैं सभी स्टूडेंट्स को कि आपको ये देखना चाहिए कि एटलीस्ट पेपर टाइम पर कैंसिल हो गया और सभी स्टूडेंट्स को फिर से एक मौका मिला है एग्जाम देने का। और जो सभी वो स्टूडेंट्स हैं जो लीक्ड पेपर के दम पर एग्जाम दे रहे थे, अब उनका मौका हट जाता है।
0: नहीं, मैं ये क्या कह रहा हूँ, आप एनटीए अपनी जगह कह रहा होगा सही, लेकिन बचाव के लिए कह रहा ना भाई, हमने कैंसिल कर दिया। बड़े लोगों के ऊपर जब आरोप लगते हैं छोटे बड़ों को सस्पेंड कर देते हैं, एपीओ कर देते हैं, हमें सब ब्यूरोक्रेसी के अंदर हुआ। लेकिन एकदम से जो पेपर देके लोग रिलैक्स हो गए, कोई घूमने जा रहा है अपने परिवार के साथ कि भाई बेटा बेटी तुमने दे दिया पेपर, अब चलो, अब उनको वापस तैयारी करनी पड़ेगी। अब कौन सा वो आपका पेपर किस तरह का आएगा, कैसे आएगा, कब होगा, ये उलझन बच्चों को मन कर, इसका जवाब कौन देगा। तो मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं और बातें करते हैं, ये तो नीट, तो और मुझे लगता है नीट कराने के लिए अगर इस तरह पेपर लीक हो तो फिर स्टेट को दे दो वापस। सारे जैसे स्टेट पहले एग्जाम कराती थी ना मेडिकल के और इंजीनियरिंग के, तो करा लेगी स्टेट अपना, फिर दिल्ली की कहाँ आवश्यकता है। यूपीएससी के अंदर पेपर लीक नहीं हो रहा है, हमने लंबे टाइम से देखा है। और कई बार क्या पेपर लीक भी होते हैं तो बाहर नहीं आते, तो क्या पता चलता अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, जैसे घुसपैठ हो जाती है अंदर ही अंदर, तो लोग करते होंगे बात बाहर नहीं आती। ये मैं मीडिया का और आपका उस सबका धन्यवाद, इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और प्रिंट मीडिया का धन्यवाद दूंगा कि आप समय समय पे मोटिवेशन देते हो, नहीं तो ने तो कोई एनटीए रद्द करे और न सीबीआई है, नेता सारे स्वयं है, इनको खुद की सरकार बनाने से फुर्सत नहीं। किसको चिंता इस देश की, बताओ कितनी बड़ी बेरोजगारी देश में, महंगाई कितनी है, कोई कर रहा चिंता डीजल क्या बिक रहा है, पेट्रोल की कीमत क्या है, गैस की क्या है, कितना अपराध बढ़ रहा है, कितनी साबित हो रही, कोई चिंता नहीं कर रहा साहब। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे लगता है कि इस मामले में प्रधानमंत्री जी को ये बयान देना चाहिए ताकि बच्चों का हौसला बढ़े और प्रधानमंत्री
1: जी, हनुमान जी बिल्कुल,
0: ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो।
1: बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूंगी आपका इंडिया टुडे से बात करने के लिए। And like you're seeing that it is the opposition that is raising serious questions over the paper leak this time around, all the more for the reason that a similar incident was reported in 2024. Why a clean chit given at that time? And most importantly, how will the government now ensure that they will get to the bottom of this problem, especially when it comes to exposing the exam mafias that may be existing in full swing? Let's also address a few questions that are on students' minds at this point. And as basic as it is, but we are repeating it for the benefit of all the students who are watching at this point, confused to whether the exam has been cancelled, when it'll happen, how it'll happen. Question number one, has NEET UG 2026 been cancelled? Yes, the NTA announced NEET exam conducted on the 3rd of May stands nullified. Question number two, will there be a re-exam? The NTA has said, yes, there will be a re-exam. It will happen and the fresh dates of it will be announced on the official channel. Question number three, for a student, do I need to register for NEET UG exam? The answer that the NTA gives is no. Existing registration does suffice. Question number four, being asked by students, do I need to pay fresh exam fee? The NTA says, no, they will refund your fee. Students are also asking, will my exam center now be changed? NTA is saying that the new admit cards will be issued, but the center may stay same, so students will have to check on that front. But very likely chance that the center will remain the same. Students are also asking, why has my exam been cancelled? The NTA is saying that there were inputs from central agencies that showed malpractice because the paper had allegedly leaked. So the NTA decided to cancel the exam and they have nullified it. Students are also asking, does that also imply a change in syllabus? The NTA is saying

0: that have spoken to India Today, the cops suspect a chain system used to spread the question paper. And the paper allegedly moved via a network of middlemen. Sharad is joining me on this story. Sharad, kya information hai is pure leak ke bare mein, is pure link ke bare mein? Kyunki yahan par hum dekh rahe hain ki kai states, kai log, kai pura chain hai isme, jo ki police keh rahi hai.
1: बिल्कुल अनिसा, कल इंडिया टुडे ग्रुप ने
2: माइक के ऊपर
0: बैक टू शरद हु इज बैक विद अस ऑन द लाइन. शरद, आप बता रहे थे कि किस तरह से पेपर जो है नीट का कितने राज्यों से, कितने लोगों के बीच से गुजरा और पुलिस इस वक्त किस तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लिंक्स बाहर आते नजर आ रहे हैं इस वक्त.
1: बिल्कुल अनीसा, वही बता रहा हूं मैं कि इंडिया टुडे ग्रुप ने सबसे पहले यह खुलासा किया कि किस तरह से नासिक में एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है, जयपुर में पकड़े गए व्यक्ति के निशानदेही पर, और अभी नासिक में उससे पूछताछ जारी है. नासिक जयपुर वाले ने बताया था कि मैं लिया हूं, पहले सबसे पहले सीकर वाला पकड़ा गया. सीकर वाला ने बताया मैं कि जमुआ रामगढ़ से लिया हूँ. जमुआ रामगढ़ ने बताया कि जयपुर से लिया हूँ. जयपुर वाले ने बताया कि गुड़गांव में एक डॉक्टर है, उससे लिया हूँ. और गुड़गांव के जब डॉक्टर को पकड़ा गया तो उसने कहा कि नासिक वाले से लिया हूँ, नासिक वाले को हिरासत में लिया गया है. और अभी तक जो खुलासा इंडिया टुडे ग्रुप लगातार पिछले दो दिन से कर रहा है, ये हम बता रहे थे कि देश का सबसे बड़ा जो पेपर लीक था नीट का, यही वाला था, नीट 2026. और देश के तमाम राज्यों में इनका एक साइलेंट नेटवर्क था जो परीक्षा के पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त कर दिया था, उसमें सेंध लगा दिया था, और 15 दिनों से देश भर में ये पेपर घूम रहा था. अनिसा, ये बहुत जानना जरूरी है कि पकड़ में कैसे आया. जैसे ही एक राकेश नाम के व्यक्ति है, MBBS कराता है, वो विदेशों से, वो एक कोचिंग संस्थान के सामने काउंसलिंग का काम करता है. उसने 30,000 रुपए में पेपर खरीद कर एक छात्र को भेजता है केरल में, जो MBBS कर रहा था, बेचने के लिए, इसी में से आएंगे पेपर. वो अपने पिताजी को वापस सीकर भेजता है. उसका पिताजी PG हॉस्टल चलाते हैं कि पापा उन लड़कियों को पेपर बेच देना, इसी में से आएंगे. मगर इनका कहना है कि मैं बेच नहीं पाया क्योंकि रात को आया था. वहां से वो एक जानकार टीचर के पास जाते हैं जो गुरु कृपा कोचिंग सीकर में पढ़ाता है. परीक्षा खत्म होने के बाद जब ये देखते हैं कि सारे के सारे सवाल तो मिल रहे हैं, तो दोनों मिलकर सीकर के उद्योग नगर थाने में जाते हैं. थाने में जाते हैं तो SHO भगा देता है कि अफवाह मत फैलाओ. तब ये जो उनके बेटे के पास आया था, उस मोबाइल का स्क्रीनशॉट जो बेटे ने इनके पास भेजा था, उसका स्क्रीनशॉट, सारा मसला लेकर NTA को भेजते हैं. NTA जो है IB सेंट्रल को देता है, IB सेंट्रल राजस्थान के DGP को देता है, राजस्थान के DGP SOG को देता है. और उसके बाद लगातार जैसे ही सीकर पहुंचती है, खुलासा होता है. और एक एक करके दो दिन तक गुमराह करते रहे कि हमने जयपुर में छप रहा था, जयपुर से लिया है. लेकिन जब NTA ने पता किया तो पता चला कि नहीं नहीं, ये तो जहाँ सोर्सेज है वहीं सही में पेपर जहाँ छप रहा था नासिक में, वहीं से लिया है. अब करीब करीब पूरे नेटवर्क का खुलासा हो गया है, लेकिन अभी भी अंदेशा है कि देश भर में और भी बड़ा नेटवर्क ये होगा.
0: Entire conspiracy from multiple states. The paper went from Nasik to multiple states, and finally the information came out when it came to Rajasthan. And we will be keeping a very, very close eye on every development in this story. But for now, let's go across to Sakshi Batra of Business Today, who joins us with all the updates from the market. Sakshi, over to you.
3: Look, this investment guru's tips will double your money. Just claim the offer.
4: Double your money from any random group. Pay attention. Promising double returns, they'll lure you in tight. Unverified groups will send fake tips overnight, emptying your pockets before you can fight. SEBI and NSE advise, consult only SEBI registered advisors and make payments only to verified accounts or UPI IDs. An investor awareness initiative by SEBI and NSE.
5: Presented by National Stock Exchange.

LIC हर पल आपके साथ। जियो मार्ट, टाइम और पैसे दोनों बचाए। ड्यूलक्स अश्योरेंस

ये पैनिक नहीं है, यही कहते थे ना इनके लोग, कहते थे पैनिक मत करिए, जब आपको पहलकदमी लेनी थी तो आप चुनाव में व्यस्त, ये आज की परिस्थिति नहीं है। 2.5 महीने पश्चात जब आप चुनाव से निवृत्त हो गए, हजारों करोड़ फूंक दिए गए चुनाव में, किसके पैसे से आ रहा? प्रधानमंत्री जी के पैसे से नहीं, लोगों के पैसे से आ रहा। तो ये पर उपदेश कुशल बहु तेरे, देश करेगा, कोविड में भी किया देश ने, लेकिन आपकी जो जिम्मेवारी थी आप उससे पुनः चुके कोविड की तरह।

0: काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो मिनिस्टर्स की संख्या है, नंबर्स है, वो 72 है। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम देखें तो जो नंबर्स ऑफ लोकसभा है उसका 15% हो सकता है, यानी 81 मिनिस्टर्स जो है वो हो सकते हैं। तो कुछ मिनिस्टर्स की संख्या भी बढ़ाई जाएगी और कुछ को ड्रॉप कर ऑर्गेनाइजेशन में बड़े जिम्मेदारी जो है, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा सकती है। एक चीज इतना जरूर है क्योंकि 2027 के अंदर जो है 7 असेंबली इलेक्शन है, उसके हिसाब से पॉलिटिकली सिनेरियो, सोशली सिनेरियो और अगर आप देखें तो सोशल इंजीनियरिंग के मद्देनजर जो है कई लोगों को उन 7 राज्यों में से जो है वो विधान को कैबिनेट में जगह मिल सकती है या ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी जगह मिल सकती है, बड़े पद मिल सकते हैं। उसमें अगर आप देखें तो जिन 5 राज्यों में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जो 5 राज्य जो है फरवरी और मार्च में है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, और 2027 के अंत में जो है गुजरात और हिमाचल के चुनाव है। तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है इन 7 राज्यों के जो लीडर्स हैं, सांसद हैं, उनको कैबिनेट के अंदर और उसके साथ साथ नितिन नवीन की जो नई टीम बनने वाली है उसमें जगह मिल सकती है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि नितिन नवीन की जो एज है, क्योंकि वो 45 साल की उम्र में जो है वो अध्यक्ष बने हैं, तो 50 वर्ष से कम आयु के लोगों को जो है वो उनकी टीम में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। देखना ये जल्दी होगा क्योंकि दोनों ही चीजें होनी है। अगर आप देखें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो गया, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो कैबिनेट रीशफल हो गया, उससे पहले गुजरात में कैबिनेट रीशफल हुआ और उत्तराखंड में हुआ, तो अब जो है वो केंद्र के अंदर होना है कैबिनेट रीशफल बड़ा, और उसके साथ साथ जो है वो नितिन नवीन की जो नई टीम बननी है उसमें कई नए चेहरों को जिम्मेदारी मिलेगी जिनमें महिलाएं भी होंगी और उसके साथ साथ युवा चेहरों को भी जगह मिली होगी।
1: Right, we could see a major rejig happening in Modi 3.0 with maybe some new youth faces and women leaders also getting some major roles as another Modi cabinet reshuffle is around the corner, as we're picking up from our sources. Thank you so much for joining in, Himanshu. Another breaking news coming in. RSS General Secretary pushes for talks with Pakistan. RSS General Secretary Dattatreya Hosable says window for dialogue should remain open with Pakistan. People-to-people contact is key. In an interview, he was asked how India should deal with Pakistan and its continued sponsorship of terrorism, to which he said that everything has been tried diplomatically and Pakistan keeps making pinpricks. He said academicians, sportspersons, scientists and community leaders should come forward there, as the political leadership and military leadership have developed some aversion to India. This is a big statement coming in from RSS number 2 after Mohan Bhagwat. He's the one number 2 in RSS. He's a senior leader and he is saying that India should remain open to a dialogue with Pakistan. People to people contact is key. In fact, he is saying that when it comes to diplomacy, Pakistan should ensure that academicians, sportspersons, scientists and other community leaders step forward, and they should take this dialogue forward when it comes to aversion with India. This is a statement that we're seeing in from RSS Supreme Leader. He's number 2 after Mohan Bhagwat, and he's making some important remarks when it comes to India-Pakistan relationship. Remember, our relations with Pakistan have not been very good, especially since this is also marks a year anniversary of the terror attacks that we saw in JNK. And now we see that the RSS Supremo is pushing for talks with Pakistan. In an interview, he has said that window for dialogue should remain open with Pakistan, and people-to-people contact is key. He has said that when he was asked how India should deal with Pakistan and its continued sponsorship of terrorism, he said everything has been tried diplomatically, and he has said that important people from Pakistan should come forward and dialogue should be continued so that there is no aversion towards India. Some important breaking news coming in. U.S. Senator exposes Pakistan amid U.S.-Iran deadlock. U.S. Senator Lindsey Graham says, I don't trust Pakistan if they actually have Iranian aircrafts parked in Pakistani bases to protect the Iranian military. That tells me maybe we should be looking for something else to mediate. No wonder this Iran-US deal is going

0: 8 days after the UDF's massive victory in Kerala, Congress still has no chief minister face. What should have been a smooth transition has now turned into an ugly power tussle. Marathon meetings, endless Delhi consultations, factional lobbying at full throttle. But still, no final decision. The ball is now completely in the Congress High Command's court. Former KPCC president and senior Keralam leaders who were summoned to Delhi met Rahul Gandhi. Sources say the momentum is now clearly with KC Venugopal, with most MLAs backing him, and 5 out of the 9 leaders consulted on Tuesday also said to be supporting him. And now, the big scoops from inside the Congress war room. KC Venugopal has emerged as the clear front-runner in the CM race. Ramesh Chennithala remains the fallback safe choice if the high command looks for a compromise formula. V.D. Satishan's aggressive lobbying for the top post may have backfired and dented his chances. Rahul Gandhi has personally stepped in and met key stakeholders to break the deadlock. And Congress top brass is now scrambling to wrap up the leadership crisis within the next 1 to 2 days. Meanwhile, Congress is also firefighting within the alliance after IUMN leaders publicly backed V.D. Satishan, forcing Delhi to open back-channel talks to contain the embarrassment. 8 days after winning a massive mandate, Congress appears more consumed by infighting and power equations than governance. And the bigger question is, if Congress cannot manage its own house after a victory, how will it manage Kerala? Bureau Report, India Today.
1: India's centuries-old love affair with gold has now entered the center of an economic debate. Prime Minister Narendra Modi's appeal to buy gold only if essential has triggered concern across India's jewellery markets. Our next report tracks the anxiety, the economics and the growing debate over India's gold dependence.
2: Sone ki ayat par bhi desh ka bahut bada paisa videsh jata hai. मैं आप सबसे देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले गोल्ड की जरूरत नहीं है.
0: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's call to stop buying gold has cast a shadow on the gems and jewelry market that is valued at more than $80 billion. At Chandni Chowk in Delhi, jewelers openly expressed their concerns.
3: Modi ji ka kehna hai ki jo investor hai gold ke roop mein kharidte hain, dead money kar dete hain, jisse desh ke andar mein bahar se jo apan jo sona import karte hain, usme depreciation ho raha hai foreign currency ka. Usko rokne ke liye ye Modi ji ne kaha hai. Aur waise bhi ek saal se jo hum dekh rahe hain market mein itni maddi aayi hui hai 6-8 mahine se. 50% व्यापार हो चुका गोल्ड जल्दी का.
4: इसका नकारात्मक प्रभाव हमारी इंडस्ट्री में पड़ा है. मेरे पास महाराष्ट्र से, बंगाल से कई बंगाली कारीगरों के फोन आए कि भाई ये मोदी जी जो बोल रहे हैं हम कैसे करेंगे. प्रधानमंत्री जी को एक ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से एक डेलीगेशन बुलाना चाहिए. हमारे पास सुझाव हैं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे.
0: Jewelers claim curbs on buying gold will impact the livelihood of lakhs of people.
5: सिर्फ एक गोल्ड सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि इसके साथ बहुत सारी अलग और जितनी बहुत सारे जो हैं एसोसिएट्स जो हैं इंडस्ट्रीज हैं वो उसके साथ इन्वॉल्व हैं. जैसे कि मैं बात करूं तो डायरेक्टली जो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर आज हमारी सेल्स की टीम को बात कर लें, हॉलमार्किंग सेंटर्स की बात कर लें, कुरियर बॉयज की बात कर लें, टूल्स इंडस्ट्री जो इसके अंदर कटिंग एंड टूल्स के अंदर यूज होती हैं. इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 20,000 टन जो गोल्ड है वो आइडल पड़ा हुआ है. हम चाहते हैं कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उस गोल्ड को बाहर लाके गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर लेके जिसके अंदर फॉरेन करेंसी की हमारी सेविंग भी होगी और जो आइडल पड़ा हुआ गोल्ड है वो एक सर्कल के अंदर आ जाएगा.
0: एट सावेरी बाजार इन मुंबई द मूड इज सॉम्बर.
6: कितने 3 करोड़ कारीगर है हिंदुस्तान में, सब भूखे मर जाएंगे. कितने सारे ज्वेलर्स हैं, वो क्या करेंगे. ऐसे भी सोना जो इस समय 50,000 से 1.5 लाख में आ गया है आज तो इतने कीमत में, ऐसे भी काम कम है. हमारे पास जो थोड़ा बहुत काम रहता है वो रिसाइकल गोल्ड से चलता है तो कहाँ लोग नया लेंगे. हाँ डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन इन्वेस्टरों से जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से सोना लेते हैं वो रुक जाए.
0: इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर्स इम्पोर्ट 700 to 800 tons every year. Over 90% of its domestic demand for gold is met through imports. Gold imports, which stood at $35 billion in 2022-23, rose to $45.54 billion in 2023-24 and $58 billion in 2024-25. India imported gold worth approximately $72 billion in fiscal year 2026, a 24% increase from the previous year. With rupees sliding against the dollar, these imports have become costlier. But will a call for austerity help improve the current account deficit or just spark panic needs to be seen. With Dipesh Tripathi, Aman Bhardwaj, Ashutosh and Ritham Jain, Bureau Report, India Today.
1: And with that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching. For more news and updates, you can log into indiatoday.in or check out the India Today app.
7: You are watching India Today.
8: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.